0: நேரில் ரசித்துக் கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணி சென்னை வானொலியின் எஃப்எம் கோல்டு 100.1. நேரம் 5:59. தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI

0: एपेक समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
0: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प

0: இசைப்பாக்களால் இறையை போற்றினோம். நிறைவு பெற்றது தேனிசை.
1: தோள் கொடுப்பதில் தோழனாய், கற்றுக் கொடுப்பதில் ஆசானாய், வழிகாட்டுவதில் சான்றோனாய், சிறியவர் பெரியவர் இளைஞர்கள் பெண்கள் இவர்களின் முன்னேற்றத்தில் உங்கள் அகில இந்திய வானொலி. அனைத்து இயற்கை சீற்றங்களிலும் சிதையாமல் உங்களுடன், அனைத்து இடர்பாடுகளிலும் இடைவிடாமல் உங்கள் சேவையில் அகில இந்திய வானொலி, என்றும் உங்கள் நலனில்.
0: எஃப்எம் கோல்டில் தொடர்வது சம்ஸ்கிருதத்தில் செய்திகள், டெல்லி அஞ்சல்.
2: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்பிரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्य दिवसः आचरितः. अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्. राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु द्वादशवर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्. प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः सङ्कल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यञ्च वर्धयन्ति.
3: कोऽपि राष्ट्र तं महान् बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है. बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं. हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
2: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्. सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः. केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति. सहकार

0: नमस्कार सुप्रभात। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। कल देश भर में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आज की हसीन सुबह ने फिर हमें याद किया। और लीजिए हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। क्यों सायरा?
1: बिल्कुल, नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। और ज़्यादा फ्रेश लग रहा है क्योंकि कल ही आपने कहा था जश्न आज़ादी हम लोग ने मनाई, एंड ऑफ कोर्स वी आर हियर अगेन ऑन संडे टू गिव यू द परफेक्ट स्टार्ट टू योर डे। एंड ऑफ कोर्स सिंस इट्स अ संडे, सो प्रॉब्ली यू नॉट रशिंग टू योर वर्क, बल्कि आराम से आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ चाय पीते हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे,
0: खाते हुए आप अपना प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: That's right, and yes, as always, we bring you a potpourri of news, and of course, in our Metro News section, we'll give you news from your very own city. We'll give you a weather update ताकि आपको पता लगे कि आज आपको छाता लेके निकलना है कि नहीं, क्योंकि दो ही सूरतें हो सकती हैं, मानसून में या तो बारिश थोड़ी होगी या बहुत
0: है। सारा दो दिन से बहुत उमस है, बारिश जरूरी है।
1: That's right, but अच्छा हुआ कल नहीं हुई बारिश, because at least in North India, the whole ritual of kite flying gone.
0: हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी तो पर मुझे दिखाई दिए कि पतंगे, बहुत प्यारी प्यारी रंगीन पतंगे जो है वो आसमान में लहरा रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: तो अच्छी बात है कल बारिश नहीं हुई और लोग अपना अच्छे सोनी ने जश्न आजादी मनाया। सो वेल, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट, फरहत।
0: जी सायरा, सबसे पहले आपके पास क्या है?
1: Well, let's begin with a beautiful place in the heart of the national capital. We are talking about Amrit Udyan at Rashtrapati Bhavan. It will be open to the general public from today till the 15th of next month. The garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed.

0: Required to book their slots online through the Rashtrapati Bhavan website. No on-the-spot booking facility will be available for the convenience of the visitors. Drinking water stalls, first aid posts, rain shelters and restrooms will be provided along the visitor route. A shuttle bus service will also be available between Central Secretariat, Metro Station and the entry point to Amrit Udyan. This service will operate at intervals of 30 minutes from 9:30 a.m. to 6 p.m. विद सकलेन अख्तर, नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
1: और अब सैरा फूलों की खूबसूरती से निकलते हैं और चलते हैं सिनेमा की दुनिया में, जहां देशभक्ति की कहानियां बड़े पर्दे पर लोगों तक पहुंच रही हैं। मुंबई में 3 दिवसीय पेट्रियोटिक फिल्म फेस्टिवल हर घर तिरंगा आज समाप्त होगा। इसका आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा ने दादा साहेब फाल्के चितनगिरी के साथ मिलकर किया था। और इस फेस्टिवल के जरिए आजादी की लड़ाई, देशभक्ति और भारत की विरासत को फिल्मों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। आज फेस्टिवल के आखिरी दिन भारत इतिहास की बात होगी, देश प्रेम की बात होगी और फ्रीडम स्ट्रगल में दिए गए बलिदानों पर आधारित फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होगी। खास बात इसमें यह है कि सभी स्क्रीनिंग्स के लिए एंट्री फ्री है और आम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य खास तौर पर यंग जनरेशन को यानी यूथ को सिनेमा के जरिए देश की संस्कृति से पहचान करवाना है। देशभक्ति की बात हो और तिरंगे का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और अब चलते हैं उस यूनिक ग्लोबल जर्नी की ओर जिसने तिरंगे को दुनिया के अलग अलग टाइम जोन से जोड़ा।
2: Yes, of course, Farhad, the first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. The External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay witnessed overwhelming participation and response from the members of the diaspora, underscoring the deep emotional connect with the Tiranga.
1: बिल्कुल सारा, और यही भाव देखने को मिला कल देश के अलग अलग हिस्सों में भी। और रुख करते हैं करगिल का, जहां आकाशवाणी करगिल ने कल बारू परिसर में उत्साह के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यालय प्रमुख अभियंता जमुना प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवारजन और आसपास के क्षेत्रों के बच्चे उत्साह पूर्वक शामिल हुए। और अपने संबोधन में जमुना प्रसाद ने उन वीरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को याद किया और कहा कि अहिंसा बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने का प्रभावी माध्यम हो सकती है। आकाशवाणी करगिल और इसके केंद्रों पर आयोजित समारोह में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के बाद देश की विकास यात्रा पर गर्व की भावना देखने को मिली। देश के बाद से अब थोड़ा ध्यान देते हैं शिक्षा पर, खासकर उन उम्मीदवारों की तरफ जो अपने एग्जाम रिजल्ट और आंसर कीज का इंतजार कर रहे हैं।
2: Here is an important update. The National Testing Agency NTA will release the provisional answer keys for UGC NET June 2026, CSIR NET, ICAR All India Entrance Examination for Admission and All India Competitive Examination for PhD programs today. The NTA said that the provisional answer keys will be published on its website. It advised candidates to rely only on official communication from NTA.
1: और वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के तहत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। ये योजना आज से लागू हो गई है। इसके तहत घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इसके बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी। ये एक बार की स्वैच्छिक घोषणा की योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। आयकर विभाग ने योजना को समझने में करदाताओं की मदद के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी इसमें जारी किए हैं।
2: एंड द गवर्नमेंट हैज डीबंक्ड अ वीडियो बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया बाय पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स व्हिच क्लेम दैट एन इंडियन MI-17 हेलीकॉप्टर वाज शॉट डाउन बाय द पाकिस्तानी आर्मी नियर बटगाम। द फैक्ट चेक यूनिट ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हैज इन्फॉर्म्ड दैट द क्लेम इज फेक। PIB further urged the citizens to stay alert and rely only on official sources for verified information.
1: सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपए के स्वतंत्रता

0: बस नकद अनुदान की पेशकश और अमेजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा बिल्कुल फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है।
1: And the Department of Telecommunications, DOT, will organize the BRICS Information and Communication Technologies track in Pune from tomorrow till the 21st of this month. The event will be organized under the theme Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The program will commence with 7th BRICS ICT Working Group meeting where delegates will deliberate on key priority areas.
0: और सारा अब क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डीकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। केएल राहुल 77 रन पर रिटायर्ड हुए। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका और इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। और श्रोताओ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले सारा से जान लेते हैं चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद से जुड़ी खबरें।
1: थैंक्स फॉर लेट्स स्टार्ट विद शहर चेन्नई। The Tamil Nadu Science and Technology Centre in the city is organising a math and science test to students of classes 6 to 9 from across boards. The test will be held on 4th of October for math and 11th for science. Each exam will have 100 questions without negative marking and will be held offline at designated exam centres. The top scorer will get a cash prize of 3,000 rupees followed by 2,000 each for two students securing the second place. The third place will be awarded to three students who get 1,000 rupees each and the fourth place will be awarded to five students with 500 rupees each. Interested candidates can apply on or before 10th of September by paying a fee of 100 rupees per exam. Another news related to students coming in from Chennai. Over 100 students of government model schools across the state presented indigenous cum traditional music and percussion instruments used by ancient Tamils and martial arts equipment, including various forms of silambam at the Student Artist Confluence at Victoria Hall in the city. The two-day event provided a platform for students and traditional artists to showcase the state's rich cultural heritage. Moving on to Bengaluru, Southwestern Railway reported major progress in safety, infrastructure and passenger services from January to July this year. According to the Southwestern Railway General Manager P. Anand, the standard anti-collusion kavach was installed on 220 kilometers of routes, while 157 kilometers of tracks were renewed and 83 kilometers of new tracks were added. He said that train punctuality improved by over 88%. The zone recorded 5,531 crore rupees in revenue. RPF also seized drugs worth over 3 crore rupees, recovered lost belongings worth 2.41 crore rupees and rescued 340 children and 23 vulnerable adults. Moving on to Hyderabad, Chief Minister Revant Reddy distributed smart ration cards at a program held at Ambedkar Stadium in Sangareddy yesterday. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that ration cards are a symbol of dignity for poor families and assured that the government would ensure that no poor person goes hungry. The Chief Minister highlighted government schemes, including fine rice for poor families, 24-hour free power for farmers, 36,000 crore rupees under Raitu Bharosa and a rupees 500 bonus for fine paddy. He said that farm loans up to 2 lakh rupees had been waived at a cost of 21,000 crore rupees. So Farhad, this was the latest that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the buzz from Delhi, Mumbai and Kolkata?
0: दिल्ली में हम बता दें आपको सारा कि जो महिलाएं बसों में सफ़र करती हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। वहीं राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 86वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ी, पूर्व सांसद, प्रसिद्ध फिटनेस कोच और हजारों शहरवासी साइकिलिंग के जरिए फिटनेस का संदेश देंगे इसमें। और अब महाराष्ट्र का रुख करें तो महाराष्ट्र सरकार ने महा डीबीटी पोर्टल पर 29 नई योजनाएं जोड़ी हैं जिससे कुल

0: योजनाओं की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी योजनाओं को इस डिजिटल मंच पर लाया जाएगा ताकि लोगों को सरकारी लाभ आसानी से मिल सके। और अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी आज शाम करीब 4 बजे कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ करेंगे। सभी जिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू नहीं किया था। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। आकाशवाणी कोलकाता के माध्यम से कल सुबह अपने संबोधन में श्री अधिकारी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपना बलिदान देकर भारत की स्वतंत्रता को संभव बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। सारा, आपने शुरुआत में ही बता दिया कि आज हम बताएंगे मौसम, कि आपको बाहर का प्लान कैसे करना होगा। अगर बारिश होगी तो छाता लेकर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे तो हम आपको बता दें, तो दिल्ली में तो बारिश का दौर नहीं है वैसे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और 2 दिन और आपको उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मुंबई में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बारिश का दौर रहेगा और कहीं कहीं कुछ जगह पर बौछारें पड़ सकती हैं हल्की। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: वेल, चेन्नई विल हैव सम रेन, बट आप बिना छाते के निकल सकते हैं क्योंकि वो शायद रात में होगी। सो यस, चेन्नई विल लाइकली विटनेस थंडर शावर्स दैट वुड अकर टुवर्ड्स लेट इवनिंग और नाइट। द टेम्परेचर्स इन चेन्नई आर एक्सपेक्टेड टू हॉवर बिटवीन 26 and 36 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु विल हैव अ क्लाउडी स्काई टुडे विथ सम लाइट रेन एक्सपेक्टेड टुडे। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस वाइल मैक्सिमम मे रीच 29 डिग्री सेल्सियस। Hyderabad will likely see a partly cloudy sky with possibility of thunder lightning today, and temperatures in Hyderabad will hover between 23 and 31 degrees Celsius.
0: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 16 अगस्त 2026।
1: That's right. And if you remember some of the important events that happened on this day, well, let's take the listeners to the year 1858. अगर आपको याद होगा जो टेलीग्राफ का जमाना था, तो well, actually Queen Victoria sent the first official transatlantic telegraph message to US President James Buchanan, inaugurating a revolutionary era of intercontinental communication. This happened on this day, that is 16th of August in 1858.
0: जी सारा, और 1930 की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध अमेरिकी एनिमेटर यूब इक्वर्स द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली रंगीन और ध्वनि युक्त कार्टून फिल्म फिडलस्टिक्स आधिकारिक तौर पर रिलीज हुई थी।
1: On this day, 1954, Time Inc. published the very first issue of Sports Illustrated magazine in the United States, which quickly grew into a global sports journalism institution.
0: 1960 में साइप्रस ने दशकों के ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के बाद अपनी आधिकारिक स्वतंत्रता की घोषणा की और एक संप्रभु गणराज्य बना।
1: Also on this day in 2008, the Trump International Hotel and Towers in Chicago, they were topped off at 1,389 feet. Making it the world's highest completed residential building above ground level at the time.
0: और सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कांगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रीय शांति पदक यानी UN पीस मेडल से सम्मानित किया गया था।
1: And for it now, if you remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or birthdays, so who's the first on the list?
0: सबसे पहले हम याद कर रहे हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान को। इनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए और इनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण हुई। सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रहीं, लेकिन इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में व्यक्त किया। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल और काव्यात्मक रही, इस कारण उनकी रचना की सादगी काफी हृदय को छू जाने वाली थी। और आपको ये झांसी की रानी पर जो उन्होंने कविता लिखी वो तो याद ही होगा, चमक उठी संसद तावन में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: एंड वेल, वी आर रिमेम्बरिंग अ वेरी यू नो अकम्प्लिश्ड एडिटर

0: और सारा राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला और उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में मात्र 13 दिनों का था। और उन्हें कविताएं लिखने का भी बेहद शौक था। बहुत सारी उनकी कविताएं हैं जो काफी लोकप्रिय रहीं। उसमें एक और बहुत ही प्यारी सी कविता थी, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, लो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई।
1: क्या बात है। एंड वेल, वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ मैडोना टुडे। शी टर्न्स, वेल, शी वॉज बॉर्न इन 58। शी डजंट लुक दैट यू कैन से ओल्ड टू कहना, इट्स जस्ट अ नंबर बिकॉज योर एटीट्यूड डिफाइंस वेदर यू आर यंग और ओल्ड, वॉट एवर योर एज माइट बी।
0: हाँ, कुछ लोगों की उम्र जो है मुझे लगता है रुक जाती है, तो उसमें से ये मैडोना जी है।
1: एब्सोल्युटली डब्ड एज द क्वीन ऑफ पॉप, शी इज नोन फॉर हर कंटिन्यूअल री इन्वेंशन एंड वर्सटिलिटी इन म्यूजिक प्रोडक्शन, सॉन्ग राइटिंग एंड visual presentation. Her works which concern social, political, even religious themes have generated both controversy and critical acclaim. Regarded as one of the most influential musicians of all time, Madonna broke gender barriers in pop music and has had a significant socio-cultural impact across her career. And everyone from the team of Altsaveri wishes Madonna a happy birthday. Let's listen.

0: And well, among her top charting singles include Like a Virgin, Papa Don't Preach, Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up, and 4 Minutes. And she's also starred in films such as Desperately Seeking Susan, Dick Tracy, A League of Their Own, and Evita. And well, a very happy birthday to Madonna.
1: और सारा आज ही के दिन जाने माने पंजाबी साहित्यकार ने हमें अलविदा कहा गुरुदयाल सिंह ने. अमृता प्रीतम के बाद गुरुदयाल सिंह दूसरे पंजाबी साहित्यकार रहे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. गुरुदयाल सिंह आम आदमी के बात कहने वाले पंजाबी भाषा के विख्यात कथाकार रहे. कई प्रसिद्ध लेखकों की तरह उपन्यासकार के रूप में इनकी उपलब्धि उनके आरंभिक जीवन के अनुभवों के संदर्भ में देखी जा सकती है.
0: And today is the birthday of David Dhawan, and of course he is known for directing comedy films in Hindi cinema, and well, he has directed 46 films in all. In fact, the 1993 action thriller

0: और सारा 1997 में डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने दो सुपरहिट फिल्में यानी दीवाना मस्ताना और हीरो नंबर वन दी थी। और वहीं उसी साल डेविड की सभी फिल्में, हीरो नंबर वन हो, बनारसी बाबू, जुड़वा, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, काफी हिट रही थी।
1: दैट्स राइट। एंड इफ यू रिमेम्बर, इनफैक्ट बड़े मियां छोटे मियां भी एक फिल्म आई थी
0: अमिताभ बच्चन के साथ।
1: यस, सो लेट्स लिसन अ सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म।

0: और आइए अब आगे बढ़ते हैं. आज है भारतीय अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन.
1: यस, सैफ अली खान द नवाब साहब ऑफ द पटौदी फैमिली. टुडे इज हिज बर्थडे एंड वेल ऑफ कोर्स ही हैज एक्टेड. अगर देखा जाए यू नो हिज करियर हैज रेंज आज तक कि वो आ रहे हैं सेलुलॉइड पे. एंड इफ यू रिमेम्बर वो जो कुमार शानू वाला दौर था तब भी,
0: 90 वाला जो दौर था ना, उसके जो गाने फेमस हुए मुझे लगता है वो हर जगह सुनाई देते थे. फिल्म आशिक आवारा जो है आई उनकी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया.
1: दैट्स राइट. एंड सैफ अली खान हैज वन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग अ नेशनल फिल्म अवार्ड एंड 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स. ही हैज आल्सो रिसीव्ड द पद्मश्री एंड ही मेड हिज एक्टिंग डेब्यू इन परंपरा दैट केम इन 1993 बट हैड सक्सेस इन मल्टी स्टारर्स लाइक ये दिल लगी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कच्चे धागे एंड हम साथ साथ हैं. एंड इन द 2000s ही गेन प्रेज एंड वन मल्टीपल अवार्ड्स फॉर हिज रोल्स इन रोमांटिक कॉमेडी like Dil Chahta Hai, Kal Ho Na Ho and also had success as a solo male star in many romantic films like Hum Tum, Parinita, Salaam Namaste and well, hum log ne ek medley prepare ki hai Farhat in which we have probably you know have some songs from that era jo Kumar Shanu ne unke liye gaye the till this era.

0: और इसके अलावा सारा उनकी सलाम नमस्ते ओमकारा तारा रमपम लव आजकल बहुत सारी जो हैं ये फिल्में थीं जो काफ़ी हिट रहीं.
1: That's right. Even cocktail भी लोगों को काफ़ी याद रहेगी. And of course some action films like Tanhaji, they were one of the highest grossing releases of 2020.
0: और सन 2007 में उनकी हिंदी ड्रामा फिल्म ओमकारा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी मिला था.
1: That's right. And with that, Farhat, it's time to call a wrap. इसी के साथ दीजिए इजाजत. फरहत एंड सायरा को नमस्कार.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।

0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला

0: ला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1,307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्ति

0: नया भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर नेहरू पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women

0: वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: हैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एआई के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग दोब्के की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्य पर तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से हराया। वहीं अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारो नाकामुरा ने अलीरेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। दूसरे दिन भी खेल बारिश की वजह से देरी से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड।

0: आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमरीका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम अधिसूचित कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
1: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले यात्रा कल सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों के मिशनों से होकर गुजरी है। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एक रिपोर्ट।
2: तिरंगे ने दुनिया भर में पूरब से पश्चिम की ओर प्रतीकात्मक यात्रा की और फिजी से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक दुनिया भर में मौजूद भारतीय मिशनों में इसे बारी बारी से फहराया गया। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। फिजी में सुबह 8 बजे शुरू हुई तिरंगे की ये यात्रा भारतीय मिशनों के माध्यम से पश्चिम की ओर बढ़ी और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, उज्बेकिस्तान और ओमान सहित 54 देशों में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया के कई देशों में भी तिरंगा फहराया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर सहित कई देशों में भारत की आजादी का उत्सव मनाया गया। भारत ने सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूपियो की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसराइल में यरूशलम के प्रसिद्ध कार्ड्स ब्रिज को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी भारत और इसराइल के बीच मजबूत संबंध तथा साझा मूल्यों का प्रतीक बनी। इसराइल में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये रोशनी दोनों देशों के मजबूत और स्थायी संबंधों को दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंगापुर, चीन और हांगकांग में भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग उपस्थित रहे। सिंगापुर में उच्चायुक्त शिल्पक एम्बुले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़कर सुना।

0: आया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दुराईस्वामी ने भारी वर्षा के बावजूद तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कथित विवादित चुनाव, हत्याओं, जबरन गुमशुदगी और आवश्यक सामान की आपूर्ति में बाधा को लेकर चिंता व्यक्त की है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुराब में हाल ही में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी पर सैन्य कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मीर यार बलूच ने कहा कि वो सुराब के गिदार गोंधन इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन में महिलाएं और बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि अशांति के दौरान पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में करीब 100 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के मिशन में गोलीबारी की कई घटनाओं में संदिग्ध हमलावर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मिसौकी काउंटी में अलग अलग स्थानों पर 5 युवकों की मौत हुई। इस घटना में 13 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। संदिग्ध हमलावर की पहचान चैड हिकमैन के तौर पर की गई है। बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे एक पीड़ित के साथ जंगल में मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि सभी 6 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। गोलीबारी की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आगे की जांच जारी है। जिम्बाब्वे के करीबा झील में एक नौका के पलट जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी जिम्बाब्वे में करीबा शहर से दूर दराज के ग्रामीण और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लोगों से भरी नाव मंगलवार को तेज लहरों के कारण पलट गई थी। अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि नाव पर कितने लोग सवार थे या कितने लोग लापता हैं। अनुमान है कि नाव की क्षमता 90 यात्रियों की थी और लगभग 153 लोग इस नौका पर सवार थे। इंडोनेशिया में कल फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। भूकंप के बाद कई और झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। इंडोनेशिया सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। दक्षिणी लेबनान में कल इसराइल के हवाई हमले में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य देर अल जहरानी गांव में हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। बेल्जियम में पूर्वी इलाके में हाई फेंस में कल लगी आग से 2000 हेक्टेयर वनस्पति जलकर राख हो गई। आग बुझाने का काम लगभग 30 घंटे तक जारी रहा। स्थानीय मीडिया के अनुसार आसपास के इलाकों में लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वाइम्स नगर पालिका के सौर ब्राइट के 500 और बुटजेन बैक के लगभग 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने अली रेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप में 3 सेटों का प्रारूप अपनाया गया था। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेल रहा है। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमेरिका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good morning. This is

0: சுகமான ராகங்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं

0: समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की भी अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को भी श्री मोदी ने धन्यवाद दिया। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संत श्री रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिक लाजविक को 2-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ய ஜய பத்ராய ஹர்வஸ்வாய நமோ நம சஹஸ்ராம்சோ ஆதித்யா.

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है।

0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support e-challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Naveen were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Rajasthan today. He will also inaugurate the dairy processing plants and cattle feed plants of various milk unions. At the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. The JPSC-JSSC aspirants agitation in Jharkhand has intensified, with students announcing fresh protest programs over alleged irregularities in recruitment examinations. The students are demanding cancellation of the JPSC 11th to 13th examinations and the JSSC

0: Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात अब समाचार विस्तार से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं एक रिपोर्ट
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें सकलैन अख्तर आकाशवाणी समाचार दिल्ली
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है और ब्यौरा हमारी संवाददाता से
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा महविश रहमान आकाशवाणी समाचार रांची
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही
4: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत

0: बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा।

0: का उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें त्रिवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंवुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 2:30.

0: கேட்ட பாடலுடன் திரைக்கானம் நிறைவு பெற்றது. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुए यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण

0: के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवायम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जालका और बुद्ध बालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं, जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 364 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी का पहले दौर में मुकाबला मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: NCVT or with eligible AOCP and specified feeder trades. The age limit is 18 to 40 years with relaxations for reserved categories and ex-servicemen as applicable. The applications must reach within 21 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility and application procedure, kindly visit Munitions India Limited website, that is at www.ddpdoo.gov.in. I repeat, it is www.ddpdoo.gov.in. Narcotics Control Bureau, NCB, Ministry of Home Affairs, invites applications for 8 private secretary posts at its headquarters and regional zonal offices in Delhi, Kolkata, Guwahati, Amritsar, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Ahmedabad on deputation basis. The post carries level 7 as per the 7 CPC. Eligible central government officers should be holding an analogous post on a regular basis or have 5 years of regular service as stenographer grade 1 in level 6 or equivalent. The maximum age limit is 56 years as on the closing date, and the deputation period will ordinarily not exceed 3 years. This is an open vacancy circular with applications considered continuously until the posts are filled. Applications received by the last day of each month will be considered against vacancies available at the end of that month. Applications must be forwarded through proper channel with the prescribed APARS, integrity, vigilance, penalty and cadre clearance certificates. Further details, you may contact NBC number, that is at 011-261-92577, or email at ada-ncb@nic.in. For details, kindly do look up the Employment News. And now we have the Employment News in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा. आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय है, योग्य उम्मीदवारों से शैक्षणिक पदों प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है. विवरण इस प्रकार है. School of Culture and Creative Expressions, School of Design, School of Development Studies, School of Global Affairs, School of Public Policy and Governance, School of Human Ecology, School of Human Studies, School of Legal and Socio-Political Studies, School of Letters, School of Management, School of Undergraduate Studies, School of Vocational Studies, School of Heritage Research and Management, School of Educational Studies. योग्यता पात्रता मानदंड सामान्य निर्देश ऑनलाइन आवेदन शुल्क और शुल्क भुगतान तथा अन्य विवरण के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट aud.delhi.gov.in. भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा 2026 का लिखित परिणाम घोषित कर दिया गया है और ये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. वेबसाइट है upsc.gov.in. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित हैं निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर. इन पदों के लिए सीनियर कंसल्टेंट 1 पद, कंसल्टेंट ग्रेड 2 1 पद, कंसल्टेंट ग्रेड 1 4 पद, यंग प्रोफेशनल 7 पद, डेटा एनालिस्ट 2 पद, रिसर्च एनालिस्ट 2 पद और थीमेटिक लीड 2 पद. परफॉर्मेंस और संगठन की जरूरतों के आधार पर 2 वर्ष की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है.

0: जो ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक के लिए हो सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 अगस्त 2026। आवेदन करने के लिए इस लिंक पर आप जा सकते हैं ncvet.gov.in/career-opportunities। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ अभियंता प्रक्रिया अभियांत्रिकी में, रिक्तियों की संख्या 5 है। अभियंता और वरिष्ठ अभियंता संचालन एवं उपयोगिता में, रिक्तियों की संख्या 5। वरिष्ठ अभियंता तथा अभियंता, रिक्तियों की संख्या 3। वरिष्ठ अभियंता और अभियंता यूरिया क्षेत्र में, रिक्तियों की संख्या 5। विद्युत क्षेत्र में रिक्तियों की संख्या 2। यांत्रिकी क्षेत्र में 2। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3। वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारी मानव संसाधन विभाग में रिक्तियों की संख्या 5। अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी विपणन क्षेत्र में रिक्तियों की संख्या 3। चिकित्सा क्षेत्र में उप प्रबंधक और सहायक प्रबंधक तथा अधिकारी, रिक्तियों की संख्या 2। गैर कार्यपालक संदर्भ में कनिष्ठ अभियंता सहायक, रिक्तियों की संख्या 6। कनिष्ठ अभियंता सहायक अमोनिया की विशेषज्ञता में, रिक्तियों की संख्या 7। यूरिया की विशेषज्ञता में रिक्तियों की संख्या 3। यूरिया संयंत्र संचालन और प्रबंधन में 8। उपकरणीकरण विशेषज्ञता के साथ कनिष्ठ अभियंता सहायकों की भी आवश्यकता है, रिक्तियों की संख्या 12 है। गुणवत्ता आश्वासन एवं निरीक्षण में रिक्तियों की संख्या 7। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 26 अगस्त 2026। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 15 से 21 अगस्त 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, शाम का ये सुहाना वक्त एक बार फिर लेकर आया है देश दुनिया की खबरों, रोचक जानकारियों और दिन भर की प्रमुख हलचलों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। अगले आधे घंटे में होगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर, क्षेत्रीय संवाददाताओं से खास जानकारी, खेल जगत की प्रमुख गतिविधियां और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्मरण जिनकी आज जयंती, जन्मदिन या पुण्यतिथि है। तो आइए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार सिन्हा। हेलो प्रशांत।
2: हेलो एंड गुड डे लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम प्रशांत कुमार सिन्हा एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट वैष्णवी। लिसनर्स, फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन।

0: India, reports, capsules, tributes and much more. All these coming over the next 30 minutes. Vaishnavi, let's begin with the news headlines first.
1: एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए. आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय.
0: स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जेपीएससी जेएसएससी एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज इन झारखंड, डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन.
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया.
0: फ्रेश लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइज फ्लड थ्रेट इन नॉर्दर्न ओडिशा.
1: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी.
0: एंड इन क्रिकेट बांग्लादेश सिक्योर हिस्टोरिक फर्स्ट टेस्ट विन इन ऑस्ट्रेलिया. And Vaishnavi, now is time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Listeners, today we will talk about a self-reliant and globally competitive nuclear energy ecosystem. India is steadily strengthening its indigenous nuclear energy ecosystem with a focus on advanced reactor technologies, small modular reactors, SMRs, domestic manufacturing capabilities, private sector participation, and long-term utilization of the country's abundant thorium resources. India's long-term nuclear energy strategy continues to be guided by the country's three-stage nuclear power program aimed at sustainable utilization of its vast thorium reserves for long-term energy security. The strategy has received further impetus through Nuclear Energy Mission, announced in the Union Budget 2025-2026, with an objective of expanding nuclear energy capacity to 100 gigawatt electric by 2047.
1: प्रशांत, अगर हम देखें तो सरकार देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए दो स्तरों पर काम कर रही है. एक और ग्रीन फील्ड साइट्स पर बड़े स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे. इनमें 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल क्षमता वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और उन्नत रिएक्टर डिजाइन शामिल है. वहीं दूसरी ओर ब्राउन फील्ड साइट्स पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे. इनका इस्तेमाल बंद किए जा रहे जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों की जगह अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों के लिए कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में और दूर दराज के इलाकों में ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति के लिए किया जा सकेगा. न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर्गत वर्ष 2033 तक 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित कर उन्हें शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क BARC स्वदेशी SMR तकनीकी डिजाइन और विकास पर काम कर रहा है. इनमें बिजली उत्पादन के लिए 220 मेगावाट इलेक्ट्रिकल क्षमता वाला भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR और 55 मेगावाट इलेक्ट्रिकल क्षमता वाला SMR-55 शामिल है. इसके अलावा बार्क 5 मेगावाट थर्मल क्षमता तक का हाई टेम्परेचर गैस कूल रिएक्टर भी विकसित कर रहा है.
0: वैष्णवी, आवर लिसनर्स मे बी अवेयर दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन स्पेशल एफर्ट्स टू क्रिएट अ ब्रॉडर डोमेस्टिक न्यूक्लियर इकोसिस्टम. दिस सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति एक्ट 2025 हैज बीन इनएक्टेड टू इनेबल वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ public and private entities in the nuclear sector. The Department of Atomic Energy is encouraging Indian industry through knowledge sharing and hand-holding for new SMR technologies while simultaneously developing domestic nuclear vendors and strengthening the private sector R&D ecosystem.
1: बिल्कुल, भारत यूरेनियम संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और थोरियम के विशाल भंडार के चरणबद्ध उपयोग के लिए 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है. इसके अंतर्गत थोरियम को पहले रिएक्टर में फिसाइल यूरेनियम 233 में बदला जाता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है.
0: लिसनर्स, अंडर द फर्स्ट स्टेज नेचुरल यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स फॉलोड बाय रीप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल टू एक्सट्रैक्ट plutonium. In the second stage, fast breeder reactors utilize plutonium to generate additional fissile material, and the third stage envisages large-scale utilization of thorium through uranium-233 bred from thorium after adequate capacity of fast breeder reactors has been established.
1: प्रशांत, अब अगर हम थोरियम की बात कर ही रहे हैं तो थोरियम

0: के इस्तेमाल की दिशा में भारत लगातार अनुसंधान और विकास कर रहा है। देश के एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के शुरुआती कोर में थोरियम ऑक्साइड पैलेट्स का इस्तेमाल किया गया है। वहीं भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर के रिसर्च रिएक्टरों में थोरिया आधारित ईंधन का परीक्षण भी किया गया है। इन प्रयोगों के दौरान इस्तेमाल किए गए थोरिया पिन को पुनः संसाधित करके यूरेनियम 233 हासिल किया गया। इसके बाद इससे कल्पक्कम स्थित इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के कामिनी रिएक्टर के लिए ईंधन तैयार किया गया।
1: वैष्णवी, द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग अ रेंज ऑफ मेजर्स टू बिल्ड अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सेल्फ रिलायंट एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी इकोसिस्टम। दीस इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस SMRs, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन्स, कंटिन्यूड कैपेसिटी building in reactor design, manufacturing, construction and the nuclear fuel cycle, as well as expansion of indigenous nuclear medicine infrastructure through the isotope production reactor to augment domestic production of medical isotopes. The government's approach therefore combines indigenous technology development, expansion of nuclear capacity, greater industry participation, advanced reactor research and a sustained investment in the nuclear fuel cycle with the larger objective of strengthening India's energy security and technological self-reliance.
0: श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या खास है।
1: Yes, listeners, the first of its kind, Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries in multiple time zones. Let's listen more from our correspondent.
2: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay also marked 150 years of Vande Mataram, celebrating its enduring legacy as a symbol of India's national spirit and pride. The relay witnessed overwhelming participation and response from the members of the diaspora, underscoring the deep emotional connect with the Tiranga. With Suparna's report, Payal Sharma for World News.
0: और अब रुख करते हैं रायपुर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कभी माओवाद से प्रभावित रहे इस क्षेत्र में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों ने देश के प्रति अपनी एकजुटता और राष्ट्रभक्ति व्यक्त की। आइए सुनते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की ये रिपोर्ट।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निकली 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा ने पूरे अंचल में राष्ट्रभक्ति का नया माहौल पैदा किया। 12 अगस्त को नारायणपुर से शुरू हुई यह यात्रा दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी तक पहुंची। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। स्कूली बच्चों, युवाओं, महिला बाइकर्स और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी ने इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। यात्रा के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनके सम्मान में वृक्षारोपण किया गया और बलिदान स्थलों की मिट्टी को सहेजने की पहल की गई। जिन क्षेत्रों को कभी माओवादी हिंसा के कारण संवेदनशील माना जाता था, वहीं आज तिरंगा शांति, विश्वास और नई उम्मीद का संदेश लेकर पहुंचा। कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रभक्ति, शांति और विकास का संदेश दिया गया। इस यात्रा ने नारायणपुर से बीजापुर तक पूरे बस्तर को राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़ा। यह अभियान बदलते बस्तर की नई तस्वीर और मजबूत होते जन विश्वास का प्रतीक बनकर उभरा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से विकल्प शुक्ला।
1: Vaishnavi, Keralam is getting into the festive spirit as the state's biggest annual festival, Thiruvonam, will be celebrated on the 26th of August. The Onam festivities begin today with Atham. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
4: Keralam is getting into the festive spirit as the state's biggest annual festival Thiruvonam will be celebrated on August 26. But Onam is much more than a one-day festival in Keralam. The celebrations begin today on

0: Harijan Cheri and agitated against untouchability. He organized state-wise Zamindari Raitu associations, no-tax campaigns, fought for the abolition of Zamindari system as farmers were unable to pay the heavy land revenue that was levied upon them. In 1940, he organized All India Kisan Sabha at Palasa.
1: Another interesting fact about this day is that Puducherry celebrates its independence on the 16th of August. Puducherry, then Pondicherry, was a French colony and their parliament ratified the Treaty of Secession on August 16, 1962, formally merging Puducherry with the Union of India.
0: Mark Twain has aptly summed up India as the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in India only.
2: हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ ये शब्द केवल पंक्तियां नहीं बल्कि उस अटल व्यक्तित्व की पहचान है जिसने भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है वे कुशल राजनेता ओजस्वी वक्ता और संवेदनशील कवि थे तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी ने लोकतांत्रिक मूल्यों संवाद और राष्ट्रहित को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भाषा और संस्कृति की गरिमा को भी नई पहचान दी देश के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया 16 अगस्त 2018 को उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति का एक युग का अंत हुआ लेकिन उनके विचार उनकी कविताएं और उनकी आवाज आज भी लोगों में राष्ट्रप्रेम और सकारात्मक की भावना जगाती है प्रशांत वैसे तो उनकी कई कविताएं मुझे पसंद है लेकिन जो मुझे बेहद सादा पसंद आती है वो मैं यहाँ पर श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी आइए सुनते हैं
3: मौत से मनुष्य की हमेशा ठनती है मौत से ठन गई जूझने का मेरा कोई इरादा न था जूझने का मेरा कोई इरादा न था मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोक कर खड़ी हो गई ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है जूझने का मेरा कोई इरादा न था मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं देखिए कवि का मन मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं
4: Listeners, today is the birthday of badminton player Lakshya Sen. He has won bronze at the World Championships and gold at the Commonwealth Games. Lakshya Sen won gold and bronze at the Thomas Cup and silver at the Asian and Commonwealth Games in team events. He also won bronze at the Asia Team and Asia Mixed Team Championships. He competed in the men's singles event at the 2024 Olympics, where he finished fourth after narrowly losing the bronze medal match.
2: अब हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान पर धैर्य और संघर्ष के लिए पहचाने जाने वाले चेतन चौहान के बारे में चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट के प्रमुख सलामी बल्लेबाजों में शामिल रहे उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट और 7 एक दिवसीय मैच खेले टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 2000 से अधिक रन बनाए और लंबे समय तक सुनील गावस्कर के सलामी जोड़ेदार भी रहे क्रिकेट से संन्यास के बाद भी वे खेल प्रशासन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहे 16 अगस्त 2020 को 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ चेतन चौहान का जीवन हमें यही संदेश देता है कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं बल्कि हर चुनौती के सामने धैर्य और हौसले के साथ डटे रहने का नाम है और आइए अब बात करते हैं गुरुदयाल सिंह के बारे में पंजाबी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले गुरुदयाल सिंह अपने यथार्थवादी लेखन और आम जन जीवन के सजीव चित्रण के लिए जाने जाते हैं उनका साहित्य समाज के हाशिए पर खड़े लोगों और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को आवाज देता है उनके प्रसिद्ध उपन्यास मड़ी द दीवा को पंजाबी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है वर्ष 1999 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था
4: Listeners, today is the birthday of actor-producer Saif Ali Khan, son of actress Sharmila Tagore and cricketer Mansoor Ali Khan Pattodi. He has won several awards including a National Film Award and seven Filmfare Awards and received the Padma Shri in 2019.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
2: खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. इन पंक्तियों को शायद ही किसी भारतीय भूल सकता है. इन शब्दों में वीरता और राष्ट्रभक्ति का जोश भरने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म आज ही के दिन 1904 को प्रयागराज के निहालपुर गांव में हुआ था. वे केवल प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी भी थी. महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी और सत्याग्रह में भाग लेते हुए जेल भी गई. उनकी कविता झांसी की रानी आज भी हिंदी साहित्य को सबसे लोकप्रिय देशभक्ति रचनाओं में गिनी जाती है.
3: Today is the birthday of director David Dhawan. Listeners, born Rajinder Dhawan on today's date in 1951, his 1999 comedy BV No. 1 earned him a nomination for the Filmfare Award for Best Director. Listeners, his notable works include Swarg of 1990, Shola or Shabnam, Bol Radha Bol, both of 1992, Raja Babu of 1994, Coolie No. 1 of 1995, Sajan Chale Sasural of 1996, and Jodi No. 1 of 2001. He started off as an editor in the film Saransh in 1984 before moving into directing. He specializes in directing comedies. His 1993 film Aankhein, starring Govinda, Chunky Pandey and Kader Khan, was highly successful at the box office and earned him his first nomination for the Filmfare Award for Best Director. Let's listen in.

0: और अब आगे बढ़ते हैं। सिनेमा में अपनी संवेदनशील अदाकारी के लिए जानी जाने वाली मनीषा कोइराला का जन्म आज ही के दिन 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उन्होंने नेपाली सिनेमा से शुरुआत करने के बाद सौदागर के जरिए हिंदी फिल्मों में कदम रखा। 1942 अ लव स्टोरी, बॉम्बे, दिल से और खामोशी जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें 1990 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल किया।
1: Listeners, she is a daughter of Prakash Koirala and the granddaughter of B.P. Koirala, one of the most popular actresses. She is the recipient of several accolades, including 3 Filmfare Awards, 1 Filmfare Award South and 1 Filmfare OTT Award. In 2001, the government of Nepal awarded her with the Order of Gorkha Dakshina Bahu. Vaishnavi, you would recall, she started her career in India with

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था प्रशांत ये। और आगे बढ़ते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली अन्नामणि उन वैज्ञानिकों में थी जिन्होंने भारत में मौसम संबंधी उपकरणों और मापन प्रणालियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। भौतिक विज्ञान और मौसम विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाली अन्नामणि ने सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा के मापन पर भी काम किया था। और श्रोताओं, अब घड़ी आगे बढ़ने का हमें समय नहीं दे रही है, बस समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो वैष्णवी और प्रशांत को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने चाहते हैं तो लॉगिन करिए हमारी वेबसाइट www.newsoneir.com पर। और नमस्कार।
1: ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 5 மணி. சென்னை வானொலி 100.1 MHz FM கோல்ட் வழங்கும் அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் சி வி சுதாகர் அவர்களின் புல்லாங்குழல் இசை கேட்கலாம். சி வி கிருஷ்ண சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வயலின், கும்பகோணம் ஏ சரவணன் அவர்கள் மிருதங்கம், பி கிரிதர் பிரசாத் அவர்கள் கஞ்சிரா. நிகழ்ச்சியில் முதலில் சலமேல ஸ்ரீரங்கம் ரங்கசுவாமி நட்டுவனார் இயற்றிய வர்ணம், நாட்டைக்குறிஞ்சி ராகம் ஆதிதாளம்.

0: தொடர்வது இந்தியில் செய்தி அறிக்கை டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
1: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रूपये की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की

बारहवीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: தொடர்வது டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं प्राची प्रिया। प्यारे श्रोताओं, भारत ने कल ही अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इस अवसर पर देश का विनिर्माण क्षेत्र आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने आया है। पिछले 12 वर्षों में मेक इन इंडिया की सोच के अंतर्गत किए गए सुधारों ने देश के उद्योगों को नई दिशा दी है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में किस तरह बदलाव आया है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल, दवा और कपड़ा उद्योगों में क्या प्रगति हुई है, तथा जहाज, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और सौर उपकरण निर्माण में भारत किस तरह अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। श्रोताओं, विनिर्माण क्षेत्र आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में लगभग 16-17% योगदान देता है और 2,70,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार भी देता है। जुलाई 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 44 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक रहा, जबकि एक वर्ष पहले ये लगभग 40 अरब डॉलर था। जून 2026 में विनिर्माण उत्पाद में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। आइए अब रिपोर्ट के माध्यम से हम जानते हैं कि रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत ने किस तरह अपनी उत्पादन क्षमता को मजबूत किया है।
3: श्रोताओं, आत्मनिर्भरता पर जोर, लक्षित निवेश और नीतिगत प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत रक्षा उपकरणों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक और निर्यातक बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 46,429 करोड़ रुपए था। रक्षा निर्यात में भी बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हुआ था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में रक्षा निर्यात में 5,500% से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वदेशी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सृजन डिफेंस इक्विपमेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म यानी डिप भी महत्वपूर्ण है। मई 2026 तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 41,000 से अधिक विक्रेताओं और 2,70,000 उत्पाद सूचीबद्ध थे। अब बात इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की जाए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, SpaceX, EMC 2.0 और PLI जैसी पहलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में तेजी आई है। वर्ष 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग 13.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है, यानी लगभग 7 गुना वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी लगभग 38,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,24,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो करीब 11 गुना की वृद्धि है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। दिसंबर सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम यानी सेमिकॉन 1.0 को मंजूरी दी गई थी। जुलाई 2026 में सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी गई।

0: जुलाई 2026 तक सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 12 विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। इन इकाइयों से उपभोक्ता उपकरणों, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों की चिप जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मोबाइल विनिर्माण में भी भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को 15 जुलाई 2026 को 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी गई थी। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब देश में ही बनाए जाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। पीएलआई योजना के अंतर्गत मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 96,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है।
1: श्रोताओं, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भारत का दवा उद्योग भी देश की विनिर्माण क्षमता और वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं कपड़ा और परिधान क्षेत्र सबसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने के साथ निर्यात में भी योगदान कर रहा है। आइए अब रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि दवा, चिकित्सा उपकरण और कपड़ा क्षेत्र में भारत की स्थिति किस तरह मजबूत हुई है।
2: श्रोताओं, वैश्विक दवा उद्योग में भारत मात्रा के आधार पर तीसरे और मूल्य के आधार पर 11वें स्थान पर है। दुनिया की लगभग 20% जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति भारत करता है और बड़ी मात्रा में टीकों की भी आपूर्ति करता है। दवा क्षेत्र की 3 पीएलआई योजनाओं के तहत 51,997 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित हुआ है। बल्क ड्रग पार्क योजना को वर्ष 2020 में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय साझा बुनियादी ढांचा तैयार करना और बल्क ड्रग के विनिर्माण की लागत कम करना है। केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति यानी स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन योजना की घोषणा की गई। और अब बात करते हैं कपड़ा और परिधान क्षेत्र की। ये भारत के प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में शामिल है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ये 4,50,00,000 से अधिक लोगों को आजीविका देता है और एमएसएमई आधारित औद्योगिक विकास को भी समर्थन देता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादकों में शामिल है और कपास के धागे का सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़ा और परिधान क्षेत्र राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 2%, विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में 11% और वस्तु निर्यात में 9% योगदान देता है। वैश्विक कपड़ा और परिधान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.1% है और भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है। कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के लिए कपड़ा पीएलआई योजना, पीएम मित्र पार्क, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, नेशनल फाइबर मिशन और हाल में घोषित मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जैसी पहल महत्वपूर्ण है।
1: प्यारे श्रोताओं, भारत का विनिर्माण क्षेत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा और कपड़ा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। जहाज और कंटेनर निर्माण, ऑटोमोबाइल और सौर पीवी जैसे क्षेत्रों में भी घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं कि इन क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता किस तरह आगे बढ़ रही है।
3: श्रोताओं, भारत में घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत करने के लिए सितंबर 2025 में 69,725 करोड़ रुपए का व्यापक पैकेज घोषित किया गया। इसमें जहाज निर्माण क्षमता, समुद्री वित्त और कौशल विकास को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। जहाज निर्माण विकास योजना यानी SBDS के लिए 19,989 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसका लक्ष्य भारत की वार्षिक जहाज निर्माण क्षमता को 45,00,000 ग्रॉस टन तक बढ़ाना है। समुद्री क्षेत्र के लिए 25,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत 24,736 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम की घोषणा की गई। जुलाई 2026 में भारत ने AP मोलर मार्सक के लिए देश में निर्मित पहला XIM शिपिंग कंटेनर तैयार किया। अब बात ऑटोमोबाइल क्षेत्र की। भारत दुनिया में दोपहिया और तिपहिया वाहनों का सबसे बड़ा बाजार है तथा यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। ये क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट उद्योग की PLI योजना

0: को सितंबर 2021 में मंजूरी दी गई थी। मार्च 2026 तक इस योजना के अंतर्गत 67,820 रोजगार सृजित हुए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2024 में पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की गई। देश भर में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए 2000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। अब सौर पीवी विनिर्माण की बात करें तो भारत में सौर सेल और मॉड्यूल का घरेलू उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। घरेलू पीवी बाजार का मूल्य लगभग 32,400 करोड़ रुपए है। मार्च 2025 में सौर सेल विनिर्माण क्षमता 25 गीगावाट हो गई, जबकि 2014 में ये 1.2 गीगावाट से भी कम थी।
1: श्रोताओं, भारत का विनिर्माण क्षेत्र आज लगातार बढ़ती क्षमता, मजबूत होती तकनीक और उद्योग में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी इस आधार को लगातार मजबूत कर रही है। नई उत्पादन क्षमताओं के विकास होने के साथ भारत की वैश्विक भूमिका और बढ़ने की संभावना है। अधिक उत्पादन, अधिक मूल्य संवर्धन और मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, भारत के विनिर्माण क्षेत्र की आगे की दिशा यही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक मोहित सिंह। नमस्कार।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहेन उक्तं यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाः च सबलाः भवेयुः इति धिया आवश्यकमस्ति यत् येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसित देशः भवेदिति। झारखण्डराज्ये जेपीएससी, जेएसएससी इति च अभ्यर्थिनां नियुक्तिपरीक्षासु अभिकथित अनियमिततायाः विषये आन्दोलनं तीव्रतरं जातमस्ति, यत्र मुख्यमन्त्रिणः हेमन्तसोरेन इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोस्ति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरजशेठः अद्य नेपालदेशस्य त्रिदिवसीयाम् आधिकारिकयात्राम् आरब्धवान्। वायव्य बंगालखातस्य उपरि सन्नद्धः नूतनः न्यूनचापः उत्तर ओडिशा प्रदेशस्य कृते जलप्लावनस्य आशंकां तीव्रं करोति इति ऋतुविज्ञान विभागेन अनुमानितमस्ति। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां गॉल अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे प्रथम निकष क्रीडा श्रृंखलायां आतिथेय श्रीलंकां विरुध्य भारतीय पक्षः नव क्रीडकाणां हानौ, यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि 55-400 धावनांकान विरच्य क्रीडन्नासीत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाहः उक्तवान् यत् युवानः, महिलाः, कृषकाः, निर्धनजनाश्च सबलाः भवेयुः इति आवश्यकमस्ति, येन 47-2000 वर्षं यावत् भारतराष्ट्रं पूर्णतया विकसितदेशः भवितुम् अर्हति। सः अवदत् यत् श्रीनरेन्द्रमोदी सर्वकारः समेषां वर्गाणां कल्याणाय, विकासाय च विशेषं ध्यानं ददाति इति च। श्रीशाहः अद्य राजस्थानराज्यस्य अलवरनगरे एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् आसीत्। तेन राज्यस्य 17 जनपदेषु 53-4600 कोटि रूप्यकाणां विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनञ्च कृतम्। तेन कथितं यत् सर्वकारेण कृषकाणां कल्याणाय अनेकाः योजनाः प्रारब्धाः। सः अवदत् यत् 2014-2020 वर्षं यावत् मोदी सर्वकारेण कृषकाणां कृते बृहत् योजनाः प्रवर्तिताः, न्यूनतम समर्थन मूल्यञ्च निरन्तरं वर्धितमस्ति इति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां पूर्वप्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयीवर्यस्य स्मारके सदैव अटल इत्यत्र पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला, केन्द्रीयमन्त्री राजनाथसिंहः, दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता, भाजपा

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be addressing fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका भी
0: वार्म वेलकम। आकार,
2: थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले सुर्खियां।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त। In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week. And domestic investors to focus in on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले दो सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई और घरेलू निवेशक अगले सप्ताह एफओएमसी मिनट्स कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: दिल्ली से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। ललित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन में लॉस बुक करते हैं 1,00,000 रुपए का, और सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और शेयर में हम 5,00,000 रुपए का कैपिटल गेन ले लेते हैं, तो मुझे क्या जो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में वो किस अमाउंट पे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा?
1: ललित जी, जो आपका सवाल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपिटल लॉस करते हैं, जैसे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के करते हैं, और वहीं पर अगर उस सेम फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरे कुछ कैपिटल गेन्स होते हैं, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म है वो दोनों के साथ हो सकते हैं। तो एक ये सर्टेन कंडीशंस होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए, जो 31 जुलाई की डेडलाइन होती है, आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। जो आप बाद में लेट रिटर्न फाइल अगर करेंगे तो फिर आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर कुछ एक जो लॉस रह जाता है उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया, आप एक दफ़ा बेहतर रहेगा अगर किसी एक टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
2: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की रफ्तार अगस्त में भी जारी है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणामों के कारण खरीदारी को समर्थन मिला है। इस बीच ऋण बाजार में भी विदेशी निवेशकों की रुचि देखी गई है। अगस्त में अब तक जनरल लिमिट रूट के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों में 69 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
3: Okay, Akar, very interesting point somebody was discussing with me, mm-hmm. and I'm in turn asking you yep. about this. What should I choose, dollar or gold?
1: I would say gold here, because when it comes to the Indian portfolios, so gold has a different role in your portfolio. It basically helps you hedge the risk. So what we have seen over the years is that whenever equities fall or there is uncertainty in the market, a fear in market, gold generally shines. So in such a scenario, it is better to have gold, but at the same time ensure that it does not form major part of your portfolio, because it is not a productive asset. When we invest in equities, when we invest in equity stocks, there we do get dividend. There the whole system, a business is working wherein it is earnings, quarterly earnings comes in. When we are investing in fixed income, therein the earnings happen through the way of interest, a fixed charge on the revenue of the companies, whether they are making profit or not. But in the case of gold, the price depends only on the demand and supply. So it is basically dependent on the other person, which is willing to pay, over and above or less than what you actually paid. So for that reason, hold it in your portfolio, but only as an insurance, maybe 5-10% or maximum 15%, not more than that.
3: Okay, and you just answered our listener about July 31st being the last date to file our IT returns. What is important is that people do not plan their tax outgo throughout the year. So what kind of planning should one do so that they are not taken in by surprise towards the end of March, that okay, where should I invest so that my tax exposure is not much? How should one plan this?
1: So firstly, in this particular case, it was broadly related to the setting off and the carry forward of capital losses, which is impossible if someone doesn't file the returns on time, 31st July. More than that, this planning was had more relation in towards the deductions which we used to take on, and the investments we used to make during the month of

0: January to March, the Section 80C investments. All these, you know, deductions have by far gone in the new tax regime.
1: Yeah.
0: So, but even in that case, I would say for that reason, I mean, one should not stop investing and rather look at their, you know, the whole income or the income plan at the very beginning of the financial year, plan their advance taxes and, you know, if capital losses or gains planned any, I mean, plan their everything systematically.
2: Amit हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपने सवाल.
3: मैडम, थैंक यू. मैडम, मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि हम ऑनलाइन यदि गोल्ड लेना है 1 ग्राम 2 ग्राम ये ले सकते हैं क्या? जो इसे गोल्ड परचेस करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, यूनिट्स परचेस करते हैं हम लोग, तो सपोज मुझे सिर्फ 1 ग्राम परचेस करना है या तो 5 ग्राम, तो क्या कुछ सोर्स कैसा है? थैंक यू.
0: अमित जी, बिल्कुल. गोल्ड अगर आपको जैसे ऑनलाइन परचेज करना है तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत एक अच्छा तरीका था वो भारत गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जो कि 1 ग्राम के यूनिट में इशू होते थे और इसमें जो भी गोल्ड का प्राइस होता था उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था. बट अभी काफ़ी समय से जो इसके जो प्राइमरी इशू होता था, जो फ्रेश ट्रांचेज होती थी, वो नहीं आई है, तो ये केवल सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है. तो उसकी एब्सेंस में जो एक बहुत अच्छा तरीका आपके पास गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड है. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. जो गोल्ड ETF है वो एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करता है और इसमें निवेश करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो. ये एकदम फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है. आप काफ़ी सारी कंपनीज के गोल्ड ETF से, उनमें से आप कोई भी जो कम खर्चे वाला, कम एक्सपेंस रेशियो का हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं. और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करते या फिर आप एक सिस्टमैटिकली भी करना चाहते हैं SIP के जरिए, तो बहुत ही एक आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन टर्न आपका पैसा जाके ETF में इन्वेस्ट कर देगा. तो एक कन्वीनियंस के तौर पे और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है.
2: गाजियाबाद से हम आशु को जोड़ेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान सर्राफा बाजार की स्थिति कैसी रही. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई. अमरीकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट तथा उम्मीद से कम अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई. इन सभी कारणों से सोने और चांदी की कीमतों को बल मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 1.8% बढ़ा और 1,54,506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% कर 2,35,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची. कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 0.8% से अधिक बढ़कर $4,437 से अधिक प्रति ट्रायाउंस पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 2.5% की बढ़त के साथ $65.10 प्रति ट्रायाउंस पर पहुंच गई. और गाजियाबाद से हम जोड़ रहे हैं आशु को. आशु जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: Yeah, thank you. Actually, little confused. I'm a regular investor in mutual funds, but the point is I read an article that most of the or the biggest mistake a person investing in mutual fund does is that not tracking it. Like I was told, like you invest it and keep on investing it and forget about it. Don't look into it much. So I did this, and then I started, tracking it through one of the applications on cell phone, etc. I came to know that some funds which were doing pretty good, according to me, they said this is not doing good. This is off the track. Do this, do that. So I am now confused. Like I am a regular investor, and what is the approach which I should follow? Should I look into it and track it regularly, and should I trust on the various applications which are there available, growth, it's like some there were 2-3 desire growth or something that they are saying that stop investing in this mutual fund and invest in that mutual fund. So I don't know which way to go as of now.
1: Too many voices.
4: So that is one thing. And yes, in related to this is, what is XIRR? So these are the two things. I just need some clarity on these two points. Thank you.
0: Sure.

0: So what we need to do is we don't have to, you know, get out of a scheme immediately when, you know, it goes through a very short term underperformance. So it is quite possible that a fund may have underperformed over the last 1 month, over the last 3 months, but that should not be the sole reason to, you know, just get out of it. What one should be doing is to go and check the long-term performance and, you know, the reasons behind it. So, you know, give it sufficient time. At the same time, you know, as you have been saying that, you know, there are multiple apps here, definitely. So while, you know, increased number of fintech apps have, you know, made it very simpler for us to, you know, start investing and, you know, track our portfolios, this is one of the problems which has emerged, because, you know, you get to hear, as Sir was saying, from too many voices. So here the best part would be to compare its performance from the category average and other schemes in that particular category. The XIRR you were talking about is basically the annualized return when you do not invest in a lump sum, when you invest in SIP, when the money outflow and inflow is at irregular intervals. So when you just make one lump sum investment and then make a withdrawal, there are just 2 points. That is basically the CAGR. And when you invest through SIPs and, you know, there are multiple inflows or any other transaction, then the annualized return calculated is XIRR.
1: आकर एक और सवाल मेरे मन में है जो बहुत सारे लोग, मैं यकीन करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के भी मन में होगा जो नए इन्वेस्टर होंगे या जो कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे थ्रू SIPs. हमारे पास अगर एक कॉर्पस ऑफ मनी है तो हम उसे सीधे तौर पर लमसम अमाउंट की तरह किसी फंड में लगाएं जो फंड हमें लगे कि ये फंड ठीक है, या हमें एक रोज़ रोज़ धीरे धीरे करके हमें ख़रीदना चाहिए जबकि हमारे पास एक साथ ही उतने पैसे मौजूद हैं, फिर भी हम फ्रैक्शंस में ख़रीदें या हम एक साथ ही जो पूरा बकेट है वो पोर कर दें?
0: बिल्कुल फ्रैक्शंस में एक साथ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारे को नहीं पता कि उस दिन जो मार्केट का लेवल है वो उसके आगे वो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा. शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और उसने आज के आज पूरा का पूरा अमाउंट निवेश कर दिया और ठीक एक हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई 10% 20%, तो जो पूरा का पूरा पैसा है उस पूरे के पूरे पे वो रिस्क आ जाएगा, वो वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगा. यहाँ पे
1: 10-20% का तुरंत का घाटा.
0: बिल्कुल. अगर मान लीजिए अगर किसने 1 लाख लगाया वो सीधा 90,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा. और यहाँ पे एकदम से इतना बड़ा लॉस देख करके बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एंग्जाइटी होती है,
1: हतोत्साहित मन हो जाता है.
0: हाँ जी. तो वो उस वक्त तो फिर उनको ये लगता है कि जितना पैसा बचा है वो मार्केट से निकालो और यहाँ से भागो, और उसके बाद वो लोग फिर कभी इक्विटी में निवेश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है. तो यहाँ पे बेनिफिट जो अगर आप फ्रैक्शंस में पैसे लगाएंगे तोड़ तोड़ के, तो ये रहेगा कि मान लीजिए उस 1 लाख में से आज आपने खाली 10,000 लगाया होता और आपने सोचा होता कि मैं हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, अगले महीने तक वो मार्केट 10% गिर गया होता, तो यहाँ पे आप जब वो और नए 10,000 लगा रहे हैं आप अपनी परचेज कॉस्ट को एक तरीके से एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले आपने थोड़ा महंगा खरीदा था अभी आप थोड़ा सस्ता खरीदे और थोड़े ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप SIP के थ्रू निवेश करिए. अगर आपके पास लमसम है भी तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के वहां से SIP चालू कर सकते हैं, और अगर आपको इस चीज का डर लगता है कि आप वो पैसा वहां से कहीं और खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे जो कि आमतौर पर रहते हैं, तो आप STP का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपना फंड हाउस चुनिए, उनके एक लिक्विड फंड में उस पैसे को पूरे लमसम को डालिए और वहां से एक STP सेटअप कर दीजिए अपने इक्विटी फंड के लिए.
1: बिल्कुल. दिल्ली से हमारे साथ वीर जुड़ रहे हैं. वीर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
2: सर. मैं ये पूछना चाहता था कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म गेन्स एप्रिशिएट हो जाएगा जी?
0: शॉर्ट टर्म से अगर जो शॉर्ट टर्म गेन से आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है वो संभव नहीं है. लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही हो पाते हैं, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा एक टैक्स एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें.
3: सो अकाल, वी बीन टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ बिट ऑन यू नो हाउ द मार्केट पैनिक हैपेंस अमंगस्ट द पीपल एंड यू हैव एड्रेस्ड इट.

0: they all have the universe, the maximum universe of the first top 100 stocks. So definitely there will be a portfolio overlap. So what I would suggest is, firstly, I mean, first get a hold of like what kind of schemes you are invested into. What kind of categories do they fall into? Are they getting repeated within the same fund category? If yes, then look at their allocations. Maybe to, you know, clean out your portfolio, you can start by weeding out the schemes which hold less than 5% in your portfolio, or have a very narrow investment mandate, say some kind of sectoral or thematic fund, and you know, doesn't invest on through the complete universe, or doesn't have that flexibility with the fund manager.
1: Okay, moving on, the domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers, including the release of the FOMC and RBI MPC minutes, macroeconomic data, quarterly earning reports, and geopolitical developments. Investors are likely to take cues also from foreign institutional investor flows, commodity prices, and currency movements. Market participants will closely monitor the monthly unemployment data and the latest figures on core industries growth. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week, with six new mainboard IPOs opening for subscription and five mainboard IPOs scheduled to make their stock market debut. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict. In Japan, GDP estimates and trade data will remain on investors' radar, while inflation figures from the UK will also be closely watched. Akar, very quickly, we'd like to understand from you regarding the IPOs. Would you recommend our listeners to actively participate in the IPOs and go in for them?
0: For a normal retail investor, unless until you have those skills to evaluate it and you know, have that temperament, don't go for them directly, because if you invest in a mutual fund scheme, your fund manager is already there to, you know, do that hard bit of work and take those decisions. But yes, at the same time, if you know, you feel very strongly positive of a particular IPO, you have analyzed it yourself, you understand what kind of you know, work that company does, and you have gone through the annual the complete prospectus, and you know, you have that temperament that, you know, if soon after investing on the listing day, there won't be much gains, but you still be able to okay and hold the stocks for a longer period of time, then yeah, definitely you can go and invest.
2: अगर मेरे पास कुछ पैसे हों जो मैं हर महीने खर्च करना चाहूँ, एस आई पी में इन्वेस्ट निवेश करना चाहूँ, तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं, इसमें मैं परफॉर्मेंस देखते हुए मैं सब में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करूँ, या मैं ये देखूँ कि यहाँ इस पर्टिकुलर कैप में मुझे सबसे अच्छी बढ़त दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, तो मैं यहाँ पर अपना वो जो सारा पैसा है हर महीने जो मैं जी बिल्कुल.
0: सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये तय करें कि आपको उस पैसे की आवश्यकता कितने सालों के बाद होगी, वो क्या पर्पस है जिसके लिए आप निवेश कर रहे हैं. क्योंकि इक्विटीज़ के अंदर भी, जैसे कि आपने कहा, जो सारी कैटेगरीज है, फ्लेक्सी कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इन सब के लिए एक अलग अलग सूटेबल होराइजन होता है. सो केवल ये देखना कि हाँ, स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले साल बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए तो मैं उसमें निवेश कर देता हूँ, सही नहीं होएगा. क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इनमें उतार चढ़ाव बहुत जोर से आता है, और आमतौर पर इसके लिए 7 से 10 साल का होराइजन रखना चाहिए. तो अपना होराइजन पक्का कीजिए, फिर फंड का चुनाव कीजिए.
2: बिल्कुल आकार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए.
0: थैंक यू
1: आकार फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 weeks ऑफ ऑगस्ट. In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week, and domestic investors to focus on FOMC minutes, corporate earning results, and geopolitical developments for cues next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.

0: विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
1: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक

0: தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है. उन्होंने आज

0: राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: திரைகாணம் கேட்டீர்கள். தொடர்வது இந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी।

गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के

0: और लक्ष्य से निभाते चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को

0: कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और

0: रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
1: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is

0: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
1: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

रानी जी, राजमाता पद्मावती और राजपुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।

0: పొట్టిత్తురు కాబట్టి హమారీ ప్రసన్నత కాల్కి కుదృష్టి పడ గయీ కాల్కి కుదృష్టి
1: अपने आप को संभालिए राजमाता।
2: राजमाता क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
3: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। मां दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
0: पुत्री दुर्गावती।
4: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
4: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
4: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है, उसे बंदी बना लीजिए।
4: जो आज्ञा राजमाता।

0: और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वह 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: जिल्ले इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
2: बहादुरी,
1: महानता,
2: बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी

0: और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
0: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना,
2: लेकिन
0: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा हैं, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
0: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
3: जहांपनाह, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
0: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहांपनाह, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
0: ओ, तब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
4: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
5: जहांपनाह का इकबाल बुलंद रहे।
0: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
5: जहांपनाह, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मात दी है।
0: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
5: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं, वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
0: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता, क्यों बीरबल?
1: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
5: जहांपनाह, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रहे हैं।
0: भला वो किसके दम पर?
5: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहांपनाह, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहांपनाह।
0: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
1: आलीजा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
0: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजेंगे।
1: और इस थाल में तोहफा क्या है?
2: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
2: जो हुक्म महारानी साहिबा।
1: जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
3: वो ऐसा ही करता है महारानी। वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
3: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
0: जो आ गया महारानी।
2: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
2: जो हुक्म।
3: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
4: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
4: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
5: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
3: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
1: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
3: जो हुक्म महारानी।

0: तैयार करने से पहले।
1: पिंजना, वो भी सोने का। बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
2: आलीजान, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
1: वो क्या?
2: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास ढूंढने का काम दिया जाता है और आपको भी
1: बिनी जरूरत। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
0: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
1: आधा सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
0: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
1: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती, जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने 1000 सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसे मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आप

0: सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ, जाओ।
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
2: नहीं महारानी,
1: इस जलालुद्दीन को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
2: महारानी काफी खून बह गया है, संभालिए अपने आप को महारानी।
1: यह

0: रानी
1: कौन?
0: रानी मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
0: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता महाराज, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं। चलिए।
1: आधार सिंह, क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है।
0: महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए।
1: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अंश ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी कड़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोते।
0: महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती, धन्य है।
2: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई।

0: मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका होगी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की घोषणा की। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने

0: आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आज आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेश बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए जिसमें 6 लोग मारे गए। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत 17 वर्षों बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीदें होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees. Across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government has introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building, guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Katana Kulathur near Chennai, the Vice President said India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
1: Recalling India's response to COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. In Jharkhand, students protesting against irregularities in state's recruitment examinations today burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejaswi Yadav in Ranchi. Students raised slogans against the state government and reiterated their demand for the cancellation of JPSC and JSSC examinations, alleging irregularities in the recruitment process. The protesters have also announced plans to gear out the Chief Minister's residence on the 20th of this month. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing

0: concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area SAFTA. The finance minister said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 crore rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic custom duty of 100%. However, eligible imports under the SAFTA agreement are exempt from customs duty. Areca nuts originating in Bangladesh qualify for the exemption, provided the imports meet the prescribed rules of origin criteria. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today formally launched the Ayushman Bharat, the central government's flagship health insurance scheme in the state. He also launched the Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana. Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel was also present at the event. Ukraine and Russia exchanged missiles and drones today, with attacks killing at least 11 people on both sides. Ukraine launched hundreds of drones across Russia in one of the Kyiv's largest aerial attacks of the war, killing 6 people. 5 people were killed in Russia's southwestern Rostov region after drone attacks targeted 3 towns. In Jammu and Kashmir, the much-awaited Sungal Tunnel on the Jammu-Poonch National Highway has been opened to public, providing a major boost to connectivity with the twin border districts of Rajouri and Poonch and surrounding areas. Constructed by the Border Roads Organization, the tunnel was earlier scheduled to open to public on the 22nd of August. The India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Odisha for tomorrow. Similar conditions are also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Ladakh and Uttarakhand for the next 2 days. And in the BWF Badminton World Championship is set to begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi tomorrow. India is hosting the World Championships after 17 years. Shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen, Ayush Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty, Trisha Jolly and Gayatri Gopichand will be leading the charge for the Indian contingent. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 14 दिनों के लिए आपातकाल घोषित, मृतकों की संख्या 51 हुई। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था और उसे दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा के अंतर्गत रियायती शुल्क का गलत फायदा मिलता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्लूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन

0: पाक ने तीन बलूच पुरुषों के जबरन लापता करने की कड़ी निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से उनके ठिकानों का खुलासा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। एक रिपोर्ट।
1: सोशल मीडिया पोस्ट में बलूच मानवाधिकार संगठन पाक ने कहा कि जबरन लापता करना बलूच छात्रों और नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। संगठन ने कहा कि आसिफ अली और 17 वर्षीय असफंद बलूच को पाकिस्तानी खुफिया और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से अलग अलग घटनाओं में जबरन अगवा किया गया था। इसने वाजिद बलूच के लगातार लापता होने की भी निंदा की। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र में जबरन लापता होने के बढ़ते मामलों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तानी अधिकारियों पर लापता व्यक्तियों के ठिकाने का खुलासा करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और पीड़ितों तथा उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए दबाव डालने का भी आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 150 से ज्यादा ड्रोन हमलों में कई घर और एक रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा और जंगल में आग लग गई। मॉस्को के गवर्नर ने भी पुष्टि की है कि यूक्रेनी हमलों से पोर्डोलस्क में वाइल्ड रैबिस के गोदाम में आग लग गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि क्रिवी रिह पर मिसाइल हमले में 2 लोग मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए। इसके बाद हुए हमलों में सुमी में 1 और ज़ापोरिज़्या में 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने क्रिवी रिह में एक मेटलर्जिकल संयंत्र और कीव में कई सैन्य औद्योगिक केंद्रों को निशाना बनाया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से निपटने, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, राहत सामग्री वितरण और पुनर्निर्माण प्रयासों को सुगम बनाना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 7.7 के भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 अन्य घायल हो गए। पूरे क्षेत्र में सैकड़ों इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि कई क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त इमारतों में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं भूस्खलन की भी सूचना मिली है जिससे मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिससे बचाव और राहत कार्य में बाधा पहुंच रही है। बेल्जियम के पूर्वी इलाके हाई फेंस के जंगल में लगी भीषण आग लगभग 27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है। ये आग बेल्जियम के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। आग से प्रभावित इलाकों से करीब 600 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से नेपाल के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ कल टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे और नेपाली सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक उन्हें आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले दो सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजारों में लिवाली के जरिए

जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। भारत की ओर से नवनीत 8वीं और दीपिका ने 25वें मिनट में गोल किया, जबकि चीन के लिए झांग यिंग और मानिंग ने गोल किए। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष डबल्स जोड़ी भारतीय चुनौती की अगुवाई करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 लोग गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 14 दिनों के लिए आपातकाल घोषित, मृतकों की संख्या 51 हुई। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Please stay tuned in for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual funds and matters related with them. But do remember that we will not be addressing fund-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। श्रोताओं, आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका भी
0: वार्म वेलकम। आकार,
2: थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले सुर्खियां।
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 16,000 करोड़ रुपीस इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ ऑगस्ट। In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week. And domestic investors to focus in on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for cues next week.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले दो सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ोतरी हुई और घरेलू निवेशक अगले सप्ताह FOMC मिनट्स कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजे और भू राजनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: दिल्ली से हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। ललित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मेरा सवाल ये था कि अगर हम एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गेन में लॉस बुक करते हैं 1,00,000 रुपए का, और सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी और शेयर में हम 5,00,000 रुपए का कैपिटल गेन ले लेते हैं, तो मुझे क्या जो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में वो किस अमाउंट में देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा?
2: ललित जी, जो आपका सवाल है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपिटल लॉस करते हैं, जैसे अगर कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स बेच के करते हैं, और वहीं पर अगर उस सेम फाइनेंशियल ईयर में कहीं दूसरे कुछ

0: कैपिटल गेन्स होते हैं, तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ ही हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म है वो दोनों के साथ हो सकते हैं। तो एक ये सर्टेन कंडीशंस होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है आपका इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो टाइम पे फाइल होनी चाहिए, जो 31 जुलाई की डेडलाइन होती है आप उसको एक्सीड नहीं कर सकते। जो आप बाद में लेट रिटर्न फाइल अगर करेंगे तो फिर आप ये वाला बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अगर कुछ एक जो लॉस रह जाता है उसको आप नेक्स्ट 8 ईयर्स तक भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि ये जो मैंने आपको बताया है, आप एक दफ़ा बेहतर रहेगा अगर किसी एक टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, अन्य खबरों में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI अगस्त के पहले 2 सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार के शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। नवीनतम डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने अब तक घरेलू शेयर बाजार में 16,621 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कुल निवेश में से 11,199 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लिवाली के जरिए, जबकि 5,422 करोड़ रुपए प्राथमिक बाजार के माध्यम से निवेश किए गए हैं। जुलाई में तेज हुई खरीदारी की रफ्तार अगस्त में भी जारी है। मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद और कंपनियों के बेहतर तिमाही परिणामों के कारण खरीदारी को समर्थन मिला है। इस बीच ऋण बाजार में भी विदेशी निवेशकों की रुचि देखी गई है। अगस्त में अब तक जनरल लिमिट रूट के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों में 69 करोड़ रुपए का निवेश आया है। वहीं फुल्ली एक्सेसिबल रूट के माध्यम से इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 972 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
2: Okay, Akar, very interesting point somebody was discussing with me, mm-hmm. and I'm in turn asking you yep. about this. What should I choose, dollar or gold?
0: I would say gold here because when it comes to the Indian portfolios, so gold has a different role in your portfolio. It basically helps you hedge the risk. So what we have seen over the years is that whenever equities fall or there is uncertainty in the market, the fear in market, gold generally shines. So in such a scenario, it is better to have gold, but at the same time ensure that it does not form major part of your portfolio, because it is not a productive asset. When we invest in equities, when we invest in equity stocks, there we do get dividend. There the whole system, a business is working wherein it is earnings, quarterly earnings comes in. When we are investing in fixed income, therein the earnings happen through the way of interest, a fixed charge on the revenue of the companies, whether they are making profit or not. But in the case of gold, the price depends only on the demand and supply. So it is basically dependent on the other person which is willing to pay, over and above or less than what you actually paid. So for that reason, hold it in your portfolio, but only as an insurance, maybe 5-10% or maximum 15%, not more than that.
2: Okay, and you just answered our listener about July 31st being the last date to file our IT returns. What is important is that people do not plan their tax outgo throughout the year. So what kind of planning should one do so that they are not taken in by surprise towards the end of March that, okay, where should I, invest so that my tax exposure is not much? How should one plan this?
0: So firstly, in this particular case, it was broadly related to the setting off and the carry forward of capital losses, which isn't possible if someone doesn't file the returns on time, 31st July. More than that, this planning was, had more relation in towards the deductions which we used to, take on and the investments we used to make during the month of January to March, the Section 80C investments. All these, deductions have by far gone in the new tax regime. Yeah. So, but even in that case, I would say for that reason, one should not stop investing and rather look at their, the whole income or the income plan at the very beginning of the financial year, plan their advance taxes and, if capital losses or gains planned any, plan their everything systematically.

0: अमित हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं. अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल.
1: मैडम थैंक यू. मैडम मुझे एक्सपर्ट से सवाल ये था कि हम ऑनलाइन यदि गोल्ड लेना है 1 ग्राम 2 ग्राम ये ले सकते हैं क्या? जो इसे गोल्ड परचेस करते हैं, म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, यूनिट परचेस करते हैं हम लोग, तो सपोज मुझे सिर्फ 1 ग्राम परचेस करना है या तो 5 ग्राम, तो क्या कुछ सोर्स कैसा है? थैंक यू.
2: अमित जी बिल्कुल, गोल्ड अगर आपको जैसे ऑनलाइन परचेज करना है तो देखिए, सबसे पहले जो बहुत एक अच्छा तरीका था वो भारत गवर्नमेंट की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स थे जो कि 1 ग्राम के यूनिट में इशू होते थे, और इसमें जो भी गोल्ड का प्राइस होता था उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता था. बट अभी काफ़ी समय से जो इसके जो प्राइमरी इशू होता था, जो फ्रेश ट्रांचेज होती थी, वो नहीं आई है, तो ये केवल सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है. तो उसकी एब्सेंस में जो एक बहुत अच्छा तरीका आपके पास गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड है. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. जो गोल्ड ETF है वो एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, और इसमें निवेश करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हो. ये एकदम फिजिकल गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है. आप काफ़ी सारी कंपनीज के गोल्ड ETF से उनमें से आप कोई भी जो कम खर्चे वाला, कम एक्सपेंस रेशियो का हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं. और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर आप नॉर्मली शेयर्स में ट्रेड नहीं करते, या फिर आप एक सिस्टमैटिकली भी करना चाहते हैं SIP के ज़रिए, तो बहुत ही एक आसान तरीका है, आप गोल्ड फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं. गोल्ड फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड है जो कि इन टर्न आपका पैसा जाके ETF में इन्वेस्ट कर देगा. तो एक कन्वीनियंस के तौर पे और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड फंड ऑफ फंड वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है.
0: गाजियाबाद से हम आशु को जोड़ेंगे, मगर उससे पहले श्रोताओं आइए जान लेते हैं कि सप्ताह के दौरान सर्राफा बाजार की स्थिति कैसी रही. सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त दर्ज की गई. अमरीकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट तथा उम्मीद से कम अमरीकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हुई. इन सभी कारणों से सोने और चांदी की कीमतों को बल मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 1.8% बढ़ा और 1,54,506 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी लगभग 2% बढ़कर 2,35,924 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची. कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 0.8% से अधिक बढ़कर $4,437 से अधिक प्रति ट्रायऑन्स पर बंद हुआ. वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान 2.5% की बढ़त के साथ $65.10 प्रति ट्रायऑन्स पर पहुंच गई. और गाजियाबाद से हम जोड़ रहे हैं आशु को. आशु जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: थैंक यू. एक्चुअली लिटिल कंफ्यूज्ड, आई एम अ रेगुलर इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स, बट द पॉइंट इज आई रेड एन आर्टिकल दैट मोस्ट ऑफ द or the biggest mistake a person investing in mutual fund does is that not tracking it. Like I was told, like you invest it and keep on investing it and forget about it. Don't look into it much. So I did this, and then I started tracking it through one of the applications on cell phone, etc. I came to know that some funds which were doing pretty good, according to me, they said this is not doing good, this is off the track, do this, do that. So I am now confused, like I am a regular investor, and what is the approach which I should follow? Should I look into it and track it regularly, and should I trust on the various applications which are there available, growth, it's like some there were 2-3 desire growth or something that they are saying that stop investing in this mutual fund and invest in that mutual fund. So I don't know which way to go as of now.
4: Too many voices.
3: So that is one thing. And in related to this is, what is XIRR? So these are the two things. I just need some clarity on these two points. Thank you. Sure.
2: So this is actually a very common problem which, you know, a normal investor goes through, and we often get these kind of questions. So firstly, when we say that you don't have to track it regularly, what we mean is that some people get obsessed with their portfolios, with their investments, like investment in direct equities. What they start doing is that they start opening their portfolio every single day, or maybe 2 times in a day. And start tracking it, like whether it performed better than the previous

0: day or not. So you should definitely be tracking your portfolio, but not on a daily or a weekly or even on a monthly basis. Maybe once in 6 months or once in a year is also fine. At the same time, as you said that, you know, some funds were previously doing good, but now they are not doing good. So yeah, definitely. So, you know, a mutual fund scheme does go through both the phases. At some point of days, it would do better. And this is there, and at some point of days, it won't do better. So, you know, I mean, every fund would go through a good as well as a bad phase. So what we need to do is we don't have to, you know, get out of a scheme immediately when, you know, it goes through a very short term underperformance. So it is quite possible that a fund may have underperformed over the last 1 month, over the last 3 months, but that should not be the sole reason to, you know, just get out of it. What one should be doing is to go and check the long term performance and, you know, the reasons behind it. So, you know, give it sufficient time. At the same time, you know, as you have been saying that, you know, there are multiple apps here, definitely. So while, you know, increased number of fintech apps have, you know, made it very simpler for us to, you know, start investing and, you know, track our portfolios, this is one of the problems which has emerged because, you know, you get to hear, as Sir was saying, from too many voices. So here the best part would be to compare its performance from the category average and other schemes in that particular category. The XIRR you were talking about is basically the annualized return when you do not invest in a lump sum, when you invest in SIP, when the money outflow and inflow is at irregular intervals. So when you just make one lump sum investment and then make a withdrawal, there are just 2 points. That is basically the CAGR. And when you invest through SIPs and, you know, there are multiple inflows or any other transaction, then the annualized return calculated is XIRR.
1: आकार, एक और सवाल मेरे मन में है जो बहुत सारे लोग, मैं यकीन करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के भी मन में होगा जो नए इन्वेस्टर होंगे या जो कुछ समय से इन्वेस्ट कर रहे होंगे थ्रू SIPs. हमारे पास अगर एक कॉर्पस ऑफ मनी है तो हम उसे सीधे तौर पर लमसम अमाउंट की तरह किसी फंड में लगाएं जो फंड हमें लगे कि ये फंड ठीक है, या हमें एक रोज़ रोज़ धीरे धीरे करके हमें ख़रीदना चाहिए जबकि हमारे पास एक साथ ही उतने पैसे मौजूद हैं, फिर भी हम फ्रैक्शंस में ख़रीदें या हम एक साथ ही जो पूरा बकेट है वो पोर कर दें?
0: बिल्कुल फ्रैक्शंस में एक साथ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो हमारे को नहीं पता कि उस दिन जो मार्केट का लेवल है वो उसके आगे वो और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा. शॉर्ट टर्म में हम लोग कभी भी मार्केट की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते. तो ऐसे में जो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि मान लीजिए अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है और उसने आज के आज पूरा का पूरा अमाउंट निवेश कर दिया और ठीक एक हफ्ते के बाद मार्केट एकदम से नीचे गिर गई 10%, 20%, तो जो पूरा का पूरा पैसा है उस पूरे के पूरे पे वो रिस्क आ जाएगा, वो वैल्यू एकदम से नीचे आ जाएगा. यहाँ पे
1: 10-20% का तुरंत का घाटा.
0: बिल्कुल. अगर मान लीजिए अगर किसने 1 लाख लगाया वो सीधा 90,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा. और यहाँ पे एकदम से इतना बड़ा लॉस देख करके बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन्वेस्टर्स को एक एंग्जाइटी होती है,
1: हतोत्साहित मन हो जाता.
0: हाँ जी. तो वो उस वक्त तो फिर उनको ये लगता है कि जितना पैसा बचा है वो मार्केट से निकालो और यहाँ से भागो, और उसके बाद वो लोग फिर कभी इक्विटी में निवेश नहीं करते, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है. तो यहाँ पे बेनिफिट जो अगर आप फ्रैक्शंस में पैसे लगाएंगे तोड़ तोड़ के, तो ये रहेगा कि मान लीजिए उस 1 लाख में से आज आपने खाली 10,000 लगाया होता और आपने सोचा होता कि मैं हर महीने एक इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाऊंगा, अगले महीने तक वो मार्केट 10% गिर गया होता, तो यहाँ पे आप जब वो और नए 10,000 लगा रहे हैं आप अपने परचेज कॉस्ट को एक तरीके से एवरेज आउट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पहले आपने थोड़ा महंगा खरीदा था अभी आप थोड़ा सस्ता खरीदे और थोड़े ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप SIP के थ्रू निवेश करिए. अगर आपके पास लमसम है भी तो आप उसको एक अलग बैंक अकाउंट में डाल के वहां से SIP चालू कर सकते हैं. और अगर आपको इस चीज का डर लगता है कि आप वो पैसा वहां से कहीं और खर्च कर देंगे, कंज्यूम कर देंगे जो कि आमतौर पर रहते हैं, तो आप STP का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपना फंड हाउस चुनिए, उनके एक लिक्विड फंड में उस पैसे को पूरे लमसम को डालिए और वहां से एक STP सेटअप कर दीजिए अपने इक्विटी फंड के लिए.
1: बिल्कुल. दिल्ली से हमारे साथ वीर जुड़ रहे हैं. वीर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्कार सर.
0: नमस्कार
2: सर. मैं ये पूछना चाहता था

0: কি শর্ট টার্ম প্রফিট সে লং টার্ম গেস অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হো জায়গা জি?
1: শর্ট টার্ম সে अगर जो शॉर्ट टर्म गेन से आप लॉन्ग टर्म लॉस सेट ऑफ करना चाहते हैं तो जहाँ तक मेरी जानकारी है वो संभव नहीं है। लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म गेन के साथ ही हो पाते, बट इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़े एक टैक्स एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट कर लें।
2: सो अकाल, वी बीन टॉकिंग अबाउट क्वाइट अ बिट ऑन यू नो हाउ द मार्केट पैनिक हैपेंस amongst the people, and you have addressed it quite a bit as well. Given the market swings that we are seeing these days, primarily due to the geopolitical developments, how should an investor deal with the market panic? You know, of course you are saying stay there, buy you know, through SIP and all that. But are there any other ways in which a panic can be tackled?
1: So I think firstly, one should be, you know, reduce the time of their, you know, news watching. So, you know, quite often what happens is that we get...
2: As you said, don't even look at your portfolio for a month.
1: Yes, yes. And even on the other angle, don't get glued to the news TV channels, because they keep on repeating the negative points one after the other. So it's better to stay informed, maybe hear it for just like 30 minutes or so during the day, and that's it. I mean, that's enough. So it will help you psychologically to, you know, stay calmer and maybe
2: what about the financial discipline?
1: So basically, yeah, it will help you there, but you know, I mean, because, you know, if you get panicked, I mean, when you start, you know, watching the news and you get panicked, then you start withdrawing your money, because then you will start feeling that, you know, okay, this is happening. Maybe it will affect the economy and then the markets will go down. So, I mean, that way is to probably get down.
3: All right. Bhopal se humare saath Shankar jud rahe hain. Shankar ji, karikram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
4: Namaste, sir. So, in a later stage of life, say after 50, initially it is good to invest more in equity, more and more in equity, and probably 100% equity. But at this stage, after 45, 50, what is your suggestion? Should we go, because equity or investment come, so should I go for more on debt fund? Hanaki debt fund mein problem ye ki return is very, very low, hardly 5.8% on ICICI bond fund or ICICI short term bond fund. In dono mein kya farak hai? Should we go for a bond fund or a short term bond fund? Ya kya? And is the debt fund a good protection against inflation? Because it is not giving even more than 6%. So, or is there any better avenue for retirees like us? Thank you.
1: So here I would say, I mean, firstly, depends on how far are you from your retirement. I mean, when do you plan to exactly retire? Is it like 50, 55 years of age or at the age of 60? So, you know, contrary to what everyone thinks that we should be moving towards debt completely, one should stay invested in equity. One should keep at least one third of their portfolio in equities. So, आपको यहाँ पे ये चीज़ का अनुमान लगाना पड़ेगा सबसे पहले कि आप अभी कितने साल दूर है अपनी रिटायरमेंट से। अगर अभी भी 10-15 साल आपको लगता है, अगर जैसे कि आपने कहा आप 45 साल के और आप 10-15 साल करेंगे, तो आप इक्विटी में अपना अच्छा खासा निवेश जारी रख सकते हैं। और ठीक 4-5 साल पहले जैसे ही आपको लगता है, आप धीरे धीरे एक ग्रेजुअल वे में सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान्स के ज़रिए आप अपना इक्विटी वाला मनी थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड इनकम में मूव करना शुरू करिए। लेकिन वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से करना है कि जब आप रिटायर भी हो जाते हैं, उसके बाद कम से कम वन थर्ड आपका इक्विटीज़ में रहे, उससे आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स ले पाएंगे। जैसे कि आपने खुद ही कहा कि जो बॉन्ड फंड्स है, जो डेट फंड्स है, वो बहुत कम रिटर्न्स देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आपके कैपिटल को प्रिजर्व रखना और बस इन्फ्लेशन किसी तरीके से बीट कर देना।
3: जसपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। जसपाल जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपने सवाल पूछिए।
5: थैंक यू मैडम, गुड इवनिंग टू ऑल।
3: गुड इवनिंग।
5: माय क्वेश्चन इज मैडम दैट आई हैव मल्टीपल स्कीम्स, माय पोर्टफोलियो इज वेल डाइवर्सिफाइड एएमसी वाइज आल्सो, बट आई हैव नाउ टोटल स्कीम्स अराउंड 20 स्कीम्स आई हैव, एंड द पोर्टफोलियो ओवरऑल इज आल्सो डूइंग फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। So I have invested in small cap, mid cap, multi, and all the other schemes, including silver and gold also. So my question is, it is advised

0: लिए, श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए.
1: थैंक यू कार फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, foreign portfolio investors infused over 16,000 crore rupees into Indian equities during the first 2 weeks of August. In bullion market, gold and silver prices rise for second straight week, and domestic investors to focus on FOMC minutes, corporate earning results and geopolitical developments for Qs next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
2: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
3: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
4: நேரம் 11 மணி 40 நிமிடம்.

0: और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स यानी वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में आयोजित किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कल कहा कि विशाखापत्तनम माने जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Union Home Minister

0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से

0: राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पर आई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। एयर इंडिया ने कहा है कि विशाखापत्तनम आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन आज से भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। इसके लिए मौजूदा एयरपोर्ट कोड VTZ का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में एयर इंडिया ने बताया कि भोगपुरम और दिल्ली के बीच हर हफ्ते 14 उड़ानें होंगी। 70,342 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल से यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में ग्रुप डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Air India has announced that all its flights to and from Visakhapatnam will operate from the new Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram from today, using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights from Bhogapuram and Delhi, providing

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நினைவில் நின்றவை நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारी

0: उन्हें 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की पीने के पानी की गुणवत्ता पाई रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल पूरे रेलवे नेटवर्क में पीने के पानी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रियों के लिए स्वच्छ पीने के पानी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उपायों के अंतर्गत वाटर कूलरों सहित पूरे रेलवे नेटवर्क में लगभग 20,000 स्थानों पर नई टैंक टू टैप जल एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिशों के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमरीका के समर्थन वाले उस नए 15 सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फिलिस्तीनी इलाकों से पीछे हटना है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अम्बेडकर ने कहा है कि राज्य में 1,440 चयनित डॉक्टरों के आने वाले दिनों में नियुक्ति किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 600 और डॉक्टरों की भर्ती का काम चल रहा है, साथ ही लगभग 250 डेंटिस्ट के भी जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने की उम्मीद है। विश्व कप में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। वहीं कल भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले ग्रुप डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan yesterday after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Air India has announced that all its flights to and from Visakhapatnam will operate from the new Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram from today using the existing airport code VTZ. In a press release, Air India informed that the airline will continue to operate 14 weekly flights between Bhogapuram and Delhi, providing convenient connectivity to major domestic and international destinations through its hubs. Spread over 77,342 square meters, the new terminal offers enhanced passenger comfort and operational efficiency. Following the Comptroller and Auditor General of India CAG report on drinking water quality, Railway Minister Ashwini Vaishnav yesterday conducted a day-long review of drinking water quality across the railway network. He also directed officials to take immediate corrective measures to ensure safe and clean drinking water for passengers. As part of the measures, a new tank-to-tap water filtration and monitoring system will be installed at nearly 20,000 locations, including water coolers, and a comprehensive water filtration and monitoring system will be installed at approximately 20,000 points across the railway.

0: தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा है कि विशाखापत्तनम आने और जाने वाली उसकी सभी उड़ानों का संचालन

0: இனிய ராகம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை பண்டிட் ஜெயஸ்ராஸ் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कल यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ कल नेपाल के 3 दिन की सरकारी यात्रा पर रवाना हुए। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ आज टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे और नेपाली सेना के सैन्य संचालन के महानिदेशक उन्हें आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। भारत कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आज इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज

0: के अधिकारियों की बैठक होगी। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में, वहीं वाणिज्य का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की अपनी योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए फिर से बुलाया है। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगा। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। इसमें 22 चेक इन काउंटर, 18 सेल्फ बैगेज ड्रॉप यूनिट, स्क्रीनिंग सिस्टम और आधुनिक सुविधाएं और 7 एरोब्रिज शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव कल खेल समाप्त होने के समय क्रीज पर थे। देवदत्त पड्डीकल अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर 167 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் குடிசாதனப்பள்ளி ஜிபி திம்மராயப்பா அவர்களின் நாகசுவரிசை கேட்டீர்கள். வேலூர் எஸ்எம்எம் முருகன் அவர்கள் தவில். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। आज इस सिलसिले में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह